0: रेडियो गुरुबाबा एफएम द्वारा जनहित में जारी संदेश
1: समस्या
0: आ
1: रही है।

हो। लागू पदार्थ को एक तरह को मानसिक समस्या पढ़ाई असर साथी को दबाव में होना आपको सपना को पक्ष में निर्णय करो तनाव खुला खुला करो समाधान लागू पदार्थ होना लागू पदार्थ टाड़ा बस स्वस्थ रहो उजाला भविष्य बजाओ। रेडियो कार्यक्रम को सहकारी में स्वास्थ्य

0: किया। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रतिबद्धता, नागरिक स्वास्थ्य प्रति हमारी प्रतिबद्धता घटी। नागरिक स्वास्थ्य सेवाओं सदस्य उपलब्धि यहाँ को स्वास्थ्य सेवा में आवश्यक पहल प्रकार ऐसी अस्पताल पास करी में संपर्क करना हार्दिक अनुरोध करा दी। अस्पताल ऐसी दे देना सेवा 24 घंटा डॉक्टर के प्रत्यक्ष निगरानी में उपचार करा जाए। प्रत्येक दिन बिहार 8 बजे ऐसी संध्या 6 बजे विशेषज्ञ फिजिशियन डॉक्टर ऐसी प्याज छाती परेजो नशा मुटु चेक जांच करी। प्रत्येक दिन नशा तथा न्यूरो सर्जरी हार्ट जोड़ी तथा जनरल सर्जरी प्रसूति सेवा नाक कान घाटी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा चेक जांच करा जाए। 24 घंटा डिजिटल एक्सरे वीडियो एक्सरे ईसीजी तथा इको मुटु एक्सरे सेवा उपलब्ध बा। सुविधा सम्पन्न लैब का सेवा उपलब्ध बा। केवल शिशु को मुख बार होना नशा दाब बैठक हाथ द्वारा निचलना बिरंगा थेरापी तथा एक उपचार थेरापी विधि से उपचार कैसे था
1: बिरामी उतन के बिना ऑपरेशन फिजियोथेरापी तथा एक उपचार थेरापी से सफल उपचार कर
0: 24 घंटा एम्बुलेंस का व्यवस्था करेगी। असहाय नागरिक एक महिला अनाथ बाल बालिका अपांग ज्येष्ठ नागरिक उतन सेवा में 10% छूट की व्यवस्था करेगी। कौशल्य अस्पताल प्रणाली बांसरी शाखा प्लस बांसरी बर्तिया पुरान पेट्रोल पंप दक्षिण पार्षद
1: संपर्क फोन नंबर 084400192 84400210 बास्करी बर्तिया संख्या 11 4 9 10।

0: technology.
1: नमस्कार, मेरा नाम सुरेश चौधरी। मैं स्क्रीन नगरपालिका वाला थाना उपमंडल प्रधान है। मेरा प्रॉपर्टी जयपुरी मुद्दे उपमंडल प्रधान का सुरेश कुमार जयपुरी किसी का आवश्यक उत्साह बहुत अच्छा है। हम लोगों को प्रॉपर्टी जयपुरी मुद्दे उपमंडल

जानकी गांव कार्यक्रम राज्य भाषा का सम प्रसारण भेजा हमारे संदेश का परिचय मुख्य मुख्य समाचार का शीर्षक से बांसुड़ी गुणस्तरीय शिक्षा मजदूर भेटी के बाद आज हमारा प्रदर्शित बनाए बांसुड़ी चार मई स्कूल का छाला रोग शिविर सम्पन्न एक जना पुष्ट रोग का प्रज्ञा का पहचान साढ़े पत्तीस लाख अभियंत्रण वर्गिया में तीन दिन राजधानी सेवा बंद देना

खाद्यान्न व्यवस्थित करूंगा। जयपुर प्रवासी तिरासी में बाल विकास में से पचहत्तर संख्या 4,500 विद्यार्थियों का लाभ 1,91,80,000 रूपये बजट नियोजन कर रहा। प्रति विद्यार्थी 20 रूपये का लाभ

0: Jakarta Kendari Klub Berat Kuli Dapat Pali Kaya Karep Hormat Puri Pasi Sumaris Persis Sunduran Sotriwo Kendari Klub 30 Dapat Pali Kaya Karep Bali Pemberian Kongka Dibasi Pis Persis Kedai Jogerian Yang Termodel Pak Kramot Soman Mat Sarsai Ekana Bekos Siding Singal Elastik Simak Plastik Input Sarsai Sarsalis Terdapur Input एक सही सोलह पिटो और पानी का पर डबल डैंकोट एक सही ठोका तीन से अड़तीस ठो स्पोर्ट हाफ पैंट एक हजार एक सही सत्तर ठोकर टू एक सही अंठावन ठो छोटी छाता दो हजार बीस दो हजार तीन सही नौ ठो टी शर्ट चार से अंठावन ठो जींस तथा पटन हाफ पैंट चार सही चौवालीस ठो जींस तथा पटन पैंट तैतालीस ठो तीन सौ इकतीस ट्राउजर एक सौ बत्तीस या पैंतालीस नब्बे उन्तीस टावल तिरपन बड़ा छाता हो तीन सौ सड़तीस क्या तो बिहार का पढ़ाई परामर्श सामान नियंत्रण तथा नियंत्रण मार्ग रोजगार आवश्यक अनुसंधान हो कानूनी कार्रवाई का अनुसार कार्यालय प्रक्रिया पठेगा तैयारी का अलग समय लगा जिला प्रशासन कार्य बढ़िया हटानी सेवा प्रणाली स्तरोन्नति का कारण तीन दिन हटानी सेवा स्थगित करना चलने के बाद कार्यालय के अनुसार हटानी विभाग का सूचना अनुसार आज सात चौबीस घंटे से छब्बीस घंटे समय जिला प्रशासन कार्य बढ़िया में से तेरह हटानी सेवा बंद रहने का हटानी विभाग और साढ़े उन्तीस घंटे से लोगों प्रणाली से हटानी सेवा संचालन करना तैयारी करके अलग चलने के बाद प्रणाली लागू करना करना प्रत्येक काम के तेरह ओर से उस समय सेवा प्रवाह में असुविधा विषय न कार्यालय चलाने बा सेवा उपलब्ध हुई बेर सेवा कार्यक्रम पर चलने असुविधा प्रति जिला प्रशासन कार्य प्रति सेवा मास प्रति सेवा फिर सुनिए में छोटी सेवा स्तरीय को सहज रूप में संचालन करना आवश्यक समय तथा तैयारी के चरण चलेगा राजधानी सेवा संबंधित थप जानकारी आवश्यक पड़ से जिला प्रशासन कार्य प्रति आधिकारिक सूचना में कार्यालय का संपर्क में पैसा कार्यालय में संपर्क रखा जानकारी के कार्यालय अर्जी करना है बर्दिया को दुर्बल गांव पालिका चार दक्षिण पूर्व निवासी तेईस वर्षीय प्रदीप खर दुर्बल अध्ययन और टीकाकरण मतदाताबाट आज बिहान करीब साढ़े ग्यारह बजे
1: उत्पादन मूलक उद्योग विस्तार रोजगारी योजना प्राकृतिक स्रोत का उपयोग तथा कपड़ा भक्ति रहने व्यवहारिक समस्या का विषय में उचित छल का मिलक नेपाल चेम्बर अफ कमर्स का अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल जानकारी दिनुभयो।
0: राष्ट्रीय समाचार संग महासन्देश का समय भाईलाटपा महासन्देश पढ़ना से पहला मुख्यमंत्री सन्देश द्वारा पांचवरी नगर पालिक गुणस्तरीय शिक्षा में चलते के विद्यालय आजाना उपस्थित करता अर्थतंत्र में चलायमान बनाए लगाने बाधक सुधार कर निजी क्षेत्र का मनोबल बढ़ना उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र शाह निजी क्षेत्र का प्रतिनिधि से छलफल कर

0: प्रोसेसिंग स्टार्टअप का प्रसार अधिकार यदि सफल होता है उनसे उनके उपचार के लिए मंचा रहे
1: विश्वास मानने में सही जानकारी पैसा लोगों को उपचार के लिए कहना था आधिकारिक इसलिए गोपाल ड्रग मार्के में जाकर आवश्यक जानकारी नहीं हो सकती था विपक्ष सरकार स्वास्थ्य तथा शिक्षा मंत्रालय एपिडेमियोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा और राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केंद्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल डब्ल्यूडब्ल्यूएफ नेपाल का साथै वित्तीय मन्त्रालय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्वदोष अनुसन्धान केन्द्र संगठन सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेसनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मित्रहरूको साथ साथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जारी सहयोगी प्रस्तुत छन्।

0: ଥାଏ ବର୍ଷା ଆମ ତନ୍ଦୁରୁସ୍ତ କରେ ପୁରା ଥାନା ସଂସଦ ଦୁଇ ଦଳ ସମସ୍ତ ପାଳନ ଯାଇଥାଏ।
1: रेडियो फुलका एफएम पर स्वास्थ्य कार्यालय डॉट एस से चौंतीस मात्रा निश्चित है।

यात्रा मंत्री के लिए अनोखे साथी बनी संस्था का प्रशासन और चुकी हैदराबाद में यात्रा के साथ ही बुलाए थे। यात्रा पहले गांव, पहले जंगल, पहले पड़ा को किनारे किनारे